हेलो एंड वेलकम. हम लेकर आ गए हैं आज का पॉडकास्ट दिन भर, पर आपके साथ मैं हूं सारिका सिंह. आपके साथ शेयर करेंगे कि आज दिन भर खबरों में क्या खास रहा. बात करते हैं आज की दो बड़ी खबरों की. पहली खबर ये कि लगभग चार महीने बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई का अंतिम संस्कार हो रहा है और इसकी तैयारियों के बीच ईरान ने अमेरिका को धमकी दे दी है. दुनिया भर के नेताओं को बुलाकर क्या दिखाना चाहता है ईरान? चर्चा के लिए हमारे

0: साथ होंगे मध्य पूर्व मामलों के जानकार डॉक्टर फजलुर रहमान सिद्दीकी। और क्या सरकार के फैसलों का विरोध करना या उसके खिलाफ नारे लगाने की वजह से किसी को शहर निकाला दिया जा सकता है, ये सवाल उठा है एक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले से। लेकिन क्यों, समझेंगे कानून मामलों के जानकार डॉक्टर स्वप्निल त्रिपाठी से। तो शुरू करते हैं। अमेरिका और इसराइल के हमलों में मौत के चार महीने बाद अब ईरान में वहां के सर्वोच्च नेता रहे आयतुल्ला अली खामनेई का अंतिम संस्कार हो रहा है, जिसके लिए समारोह शुरू हो गया है। पूरे ईरान में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक शुक्रवार से खामनेई का पार्थिव शरीर तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। खामनेई के साथ साथ फरवरी में हुए हमलों में मारे गए उनके परिवार के और सदस्यों के पार्थिव शरीर भी वहां रखे जाएंगे। खामनेई के साथ जिन चार लोगों को दफनाया जाएगा उनमें उनकी बेटी, दामाद और पोती के अलावा ईरान के मौजूदा सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई की पत्नी भी शामिल है। और इसके बाद तेहरान में आधिकारिक राजकीय अंतिम संस्कार आयोजित किया जाएगा। माना जा रहा है कि देश भर से करीब 2 करोड़ लोग इसमें शामिल होंगे और इसको देखते हुए सरकार ने सोमवार तक सभी दफ्तर बंद करने के आदेश दिए हैं। साथ ही तेहरान में हवाई क्षेत्र को भी बंद किया जाएगा। इसके लिए देश विदेश से प्रतिनिधि ईरान पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, चाइना पीपल्स कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट वी दोंग भी तेहरान पहुंचे हैं। और भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार बिहार के गवर्नर सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्र मार्गरिटा 3 जुलाई को ईरान जाएंगे। इस खास आयोजन से पहले ईरान ने अमेरिका और इसराइल को चेतावनी भी दी है। ईरान के खातम अल अनबिया हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा है कि अगर अमेरिका, इसराइल या उनके सहयोगी ने कोई कार्रवाई की तो करारा जवाब मिलेगा। अब इसके मायने क्या है, चर्चा के लिए मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में सीनियर रिसर्च फेलो और मध्य पूर्व मामलों के जानकार डॉक्टर फजलुर रहमान सिद्दीकी। डॉक्टर फजलुर रहमान, सवाल उठ रहा है कि जितने लोग जा रहे हैं, जैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं या चीन के जो रिप्रेजेंटेटिव है पहुंचे हैं या दुनिया के जो भी लोग आएंगे, इससे क्या दो मैसेजेस जाएंगे? एक तो ये कि ईरान का रीअलाइनमेंट अब किन लोगों के साथ हो रहा है आयतुल्लाह अली खामनेई के बाद, और दूसरा ये क्या अंदर खाने ये ताकत का प्रदर्शन है और ये दिखाने की कोशिश है कि एकता है ईरान में अभी भी?
1: देखिए, इसमें जो है 3-4 मैसेजेस हैं। पहला मैसेज ये है कि ईरान किसी तरह से किसी भी पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल स्टेडी प्रेशर नहीं आने वाला है। दूसरा मकसद ये है कि अभी भी अगर ईरान की जो पूरी कोशिश है कि ईरान ग्लोबली आइसोलेटेड है, तो उसमें किसी तरह का ये ईरान यूएस को ही नहीं समझना चाहिए कि ईरान के रवैये, ईरान के तहत जो उसका रवैया है वो पूरी दुनिया का रवैया है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में अभी भी उसकी अपनी शनाख्त है, अपनी पैठ है, उसका अपना से है। तीसरा रवैया ये है, तीसरा उनका एटीट्यूड यह है, ये बताना चाहते हैं कि उनके लिए स्पिरिचुअल लीडर की जो अहमियत है, उनका जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, उनकी जो पॉलिटिकल लेगेसी है, उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से कायम है, इस्टेब्लिश है, और उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ या ये समझना कि उसको मजबूत नहीं है, बहुत अंदर से फ्रेजाइल है, बहुत ही अंदर से कमजोर, जैसा कि यूएस बार बार कहता रहा है कि रिजीम जो है बहुत ही अनडेमोक्रेटिक है, तो उसको ईरान ये मैसेज दे रहा है कि हमारी जो सिस्टम 79 का जो सिस्टम है बना होगा उस पर अभी तक हम कायम है और उसी को हम और फर्दर कंसोलिडेट करेंगे। इसमें पांचवा मैसेज ये है कि ईरान ऐसा नहीं है कि ईरान पिछले जो 2-3 महीने हो रहा है उसमें ईरान कहीं से दबा हुआ है या ईरान को कहीं कोई खतरा है या ईरान की मौसिस और ईरान के रिजीम में कोई गैप है या कोई रिस्क है या इस तरह का कोई बड़ा डिवाइड है। जैसा कि आपने बताया कि 2 करोड़ लोग वहां पे आ रहे हैं, इसके लिए एक मैसेज ये है कि ईरान की जनता जो है पूरी तरह रिजीम के साथ है, पूरी तरह सिस्टम के साथ है। और इसमें एक बात और भी है, ये अपनी पूरी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को, अपने जो उनका सिस्टम है, जो उसकी स्ट्रेंथ जो है, उसका जो रेसिलियंस है और जो उनके जो हार्ड हेडेड जो एटीट्यूड है ग्लोबल पावर के तहत, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इसराइल हो, उनको ये बताना है कि ईरान वैसे ही अब तक उसी तरह स्टीडफास्टनेस के साथ, अपनी उसी रेसिलियंस के साथ, अपनी मजबूती के साथ, अपनी यूनिटी के साथ दुनिया के सारे जो भी धमकी हो, जो भी थ्रेट हो, जो भी हालात हो, ईरान पूरी तरह खड़ा है फेस करने के लिए, उसको कन्फ्रंट करने के लिए, उसमें कहीं से अपने किसी भी स्टैंड में उसको कोई बच नहीं है, कोई रिट्रीट नहीं है, कोई विड्रॉल नहीं है।
0: जी, भारत से जो मेहमान जा रहे हैं ये अटेंड करने के लिए, उससे क्या संदेश दे रहा है कि अब जो ये वॉर हुआ है अमेरिका और इसराइल के साथ, उस तनाव के बीच में भारत और ईरान के रिश्ते क्या होंगे?

0: देखिए भारत ईरान के रिश्ते की बात आती है तो हम दो तीन चीजें बहुत देखते हैं। हम हमेशा ये बात करते हैं कि हमारा लिंग बहुत सिविलाइजेशनल है, बहुत ही कल्चरल है, बहुत ही हिस्टोरिकल है, बहुत ही पॉलिटिकल है। लेकिन आज की बदलती दुनिया में जो फास्ट चेंजिंग दुनिया है उसमें इन सारे एलिमेंट की जगह बहुत कम है। आज के रिश्ते तय होते हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन पे, रिश्ते तय होते हैं जियो पॉलिटिक्स पे, रिश्ते तय होते हैं हमारे नेशनल इंटरेस्ट पे, रिश्ते तय होते हैं हमारे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे। तो इस बदलते हुए परिपेक्ष में, बदलते हुए प्रोस्पेक्ट में और डायनामिज्म में और पैराडाइम में ये हिंदुस्तान का फैसला जो है उसके अपने कुछ नेशनल इंटरेस्ट है, कहीं उसके लार्जर इंटरेस्ट है, कहीं उसके शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट है, कहीं लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है। इन सारी चीजों से लेकर चीजें डिफाइन होती है। तो बहरहाल ईरान से इंडिया के रिश्ते अच्छे रहे हैं, पास पे रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं ग्लिचेस भी आए हैं। तो उसे ये चीजें आती आती रहेंगी, लेकिन इंडिया का प्राइमरी कंसर्न ये है
1: जी
0: कि हमारे लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट है उससे हम कहीं ऐसा ना हो कि इन चीजों से लेके हम डिरेल कर जाएं, कहीं डिगेड कर जाएं और वो हमें कहीं मेजर ब्लो ना आ जाए। इन
1: जी
0: सारी चीजों को देखते हुए रीजनल ब्लूबक चीज इंडिया ने फैसला किया है।
1: अब एक और अहम खबर है जिसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, वो ये कि जो नए सुप्रीम लीडर है मुश्तबा खामनेई, वो अपने पिता को आखिरी विदाई देने शायद ना जा पाए। इस तरह की खबरें मीडिया में, हालांकि बीबीसी इसकी पुष्टि नहीं कर पाई है, लेकिन अगर वो नहीं जाते हैं तो ये मैसेज क्या है, इसे कैसे देखा जाए?
0: ये मेरे ख्याल में ये मैसेज जरा सा लोगों के दिल में, मतलब ये चीजें इसी दो तीन मैसेज आएगा। उनकी जो जो मैंने खबरें मैंने पढ़ी वो सिक्योरिटी की वजह से नहीं जाएंगे, तो वो जरा सा लोगों के लिए एक कुछ शक की बुनियाद है। शक अननेसेसरी लोगों के अंदर एप्रिहेंशन पैदा होगा, जो पहले से चला रहे कि मुश्तबा खामेनी की जो हेल्थ कंडीशन है वो क्या है। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में शायद ईरानी लीडरशिप जो है उनको लेकर किसी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहती है, जैसा कि अभी तक इसराइल और यूएस ने जो उनके बड़ी बड़ी टॉप लीडरशिप को जो मारा है, चाहे अली लारेजानी हो चाहे खामेनी हो, इस तरह का कोई भी मूव नहीं लेना चाहती। और तीसरी बात यह है कि ये शायद ये दिखाना है कि देखिए मुश्तबा खामेनी का आना ना आना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अली खामेनी का जाना और उनके साथ लोगों की सोलिडिटी, उनके साथ लोगों का कंपैशन उसी तरह बरकरार है जैसे पहले था। तो इसमें तीन चार चीजें जैसे मैं देखता हूँ, यही सारी चीजें आया, यही उसकी वो डायनेमिक्स है। और मेरा जो बेसिक मेरा मानता है उनका फोकस ये, उनका कंसर्न ये कि हमने बहुत कुछ खो दिया है, अब ऐसे कोई भी रिस्क नहीं लेना है जिससे हमारी लीडरशिप को किसी मुस्तकबिल में, किसी नियर फ्यूचर में इस तरह का कोई मेजर ब्लो लगे।
1: अब जो ईरान ने धमकी दी है कि एक तरह से सुरक्षा के इंतजाम भी वहां पर किए जा रहे हैं, उस धमकी को कैसे देखा जाए, खासकर तब जब सीज फायर है, दोनों पक्ष बातचीत कर रहे हैं, क्या खतरा अभी भी वहां है?
0: ये खतरा तो है। और देखिए अभी आपको याद होगा कि इनके जो ओथ टेकिंग सेरेमनी में जो वहां के फलस्तीनी लीडर आए थे हनिया, उनको मारा गया था, और वक्तन फवक्तन ये उनकी टॉप लीडरशिप को टारगेट करते रहे हैं। तो जो उनको इस ईरान के अंदर एक कंसर्न तो है, ईरान के अंदर एक एंजाइटी तो है, लेकिन उसको लेके ये धमकी ईरान का बहुत ही नेचुरल रिस्पॉन्स है, बहुत ही नेचुरल रिएक्शन है। और जो कि इधर तीन चार दिन पहले भी जो खबर आई है कि इसराइल ने इनका पूरा प्लान था कि उनके लीडरशिप को एलिमिनेट करने का, उसको भी मद्देनजर रखते हुए ईरान ने यह फैसला लिया है। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में इस वक्त इसराइल इस पोजिशन में नहीं है कि इस तरह का कोई बहुत ही डेंजरस, इस तरह का कोई इस तरह का मूव ले सके जो ईरान को फर्दर, सॉरी यूएस को फर्दर एंटेगोनाइज कर सके और ग्लोबल कम्युनिटी से फर्दर एस्पिरेशन हो जाए, इसलिए बातचीत बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। यह खतरा तो बना हुआ है। ईरान यूएस को भी ये कंसर्न है कि इसराइल चाहता है डिरेल हो, इसराइल चाहता है कि किसी तरह सैबोटाज करे। लेकिन मेरे ख्याल इस क्रिटिकल सिचुएशन में जहां दुनिया के सारे लीडर पहुंच रहे हैं, जो दुनिया की सारी सोलिडरिटी एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री की या बिल्कुल साउथ की, उसमें इसराइल इस तरह का मूव मुझे लगता है कि नहीं ले सकता है। और ईरान का जो कंसर्न है, जो यूएस की भी जो रिपोर्ट आई है, जो इसराइल का इतिहास है, जो माजी है, उन सब चीजों को देख के देखा जाए तो ईरान का जो रिएक्शन, ईरान का जो थ्रेट, ईरान की जो वार्निंग है, दैट इज क्वाइट नेचुरल।
1: जी डॉक्टर फजल रहमान, अब सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा जो सुप्रीम लीडर रहे हैं, जिनका इतने सालों तक एक तरह से कमांड रहा है, सिंगल हैंडेड उन्होंने ईरान को संभाला है, उनके जाने के बाद और मुज्तबा खामनेई इतने टाइम से दिखे नहीं है, किसी को नहीं पता है वो किस हाल में है, अब आप ईरान को किस ओर जाता हुआ देखते हैं? और उसके बीच में एक वॉर भी हो चुका है, वो वॉर जिसका डर हमेशा से ईरान के लोगों को था।
0: देखिए बहरहाल जो खामेनी का जो ऑरा था, जो खामेनी का रेफरेंस था, उसकी वजह यह थी कि खुमैनी की वो सक्सेसर थी इमीडिएट, वो खुमैनी जिनको जिन्होंने दुनिया में एक नई तरह की पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस की, उनको इमीडिएट सक्सीड किया था खुमैनी ने। वो ऑरा, वो रिवरेंस, वो अथॉरिटी, वो रिस्पेक्ट तो मुश्तबा खुमैनी राही की बात कमाल नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल ईरान की जो लीडरशिप है उसने ये भी साबित कर दिया है इधर पिछले चार

0: पांच महीने में, पर्टिकुलरली जून से, जो लास्ट जून में पहला जो 12-day वार हुआ था, उससे ये साबित कर दिया कि मेरे पास हमारी लीडरशिप के आने जाने से हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में कोई हताशा नहीं आती है, किसी तरह का कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता, किसी तरह का कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है, और सिस्टम जो है बिल्कुल इंटैक्ट है। मुश्तबा खामेनी उसके बहुत ही सिंबॉलिक फिगर है, मुश्तबा खामेनी बहुत बड़े फिगर है, लेकिन अगर वो चीजें अगर नहीं है, ये सिस्टम का हिस्सा है, उनके बेटे ने सक्सीड किया है, इससे साफ साफ जाहिर होता है कि वहां की किलर भी है, अभी भी उनका पूरा कमांड है, IRGC का पूरा कमांड है। तो खुमैनी से लेके आज तक तकरीबन 45 साल में वहां की जो थियोलॉजिकल लीडरशिप है, स्पिरिचुअल लीडरशिप है, उसमें किसी तरह का कोई,
1: बिल्कुल डॉक्टर फजल रहमान, लेकिन एक युग तो खत्म हो गया है ईरान में, अब नया ये आने वाला वक्त कैसा होता है ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और ये जानकारी है कि तेहरान के बाद खामनेई के पार्थिव शरीर को ईरान के पवित्र माने जाने वाले शहर नजफ और कर्बला ले जाया जाएगा, जिसके बाद उनके गृह नगर मशहद में उन्हें दफनाया जाएगा। और अब आज की दूसरी स्टोरी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने नागरिकों के विरोध प्रदर्शन के अधिकार पर एक ऐसा फैसला सुनाया जिसकी चर्चा हो रही है। अदालत ने साफ साफ कहा है कि सरकार की नीतियों का विरोध करना या उनके खिलाफ नारेबाजी करना किसी भी नागरिक को शहर से तड़ी पार करने का आधार नहीं हो सकता। मामला दरअसल यह है कि सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी, जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महाराष्ट्र महासचिव हैं, चौधरी के खिलाफ जारी था एक एक्सटर्नमेंट ऑर्डर यानी तड़ी पार का आदेश। कोर्ट ने इस ऑर्डर को रद्द कर दिया। मामले की सुनवाई करते हुए जज जस्टिस माधव जामदार ने मुंबई पुलिस की कार्रवाई की आलोचना की और सवाल किया कि बीजेपी सरकार मुर्दाबाद और अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे कार्रवाई का आधार कैसे बन सकते हैं। उन्होंने मौखिक रूप से कहा कि नागरिकों को सरकार का गुलाम नहीं बनाया जा सकता। पुलिस मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की सेवक नहीं है, बल्कि वो जनता की सेवक है। अब इसका मतलब क्या है, मेरे साथ इस पर बात करने के लिए लाइव जुड़ गए हैं विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के डॉक्टर स्वप्निल त्रिपाठी। डॉक्टर स्वप्निल त्रिपाठी, सबसे पहले तो ये कि कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा है, ये इसको कैसे समझा जाए?
2: मौखिक रूप से जो भी कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किए उन्हें देखा जाए तो एक बहुत स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश करी है कोर्ट ने कि आप सरकार की और सरकार के पदाधिकारों की आलोचना कर सकते हैं और ये गुनाह नहीं है। लेकिन अगर हम पूरा जजमेंट पढ़ते हैं तो जजमेंट में ये बहुत ही छोटा पार्ट है एक जजमेंट का, उन्होंने दो पैराग्राफ में कहा है, पर ये दो पैराग्राफ बहुत जरूरी है। और जरूरी क्यों है इसको मैं थोड़े विस्तार से समझाता हूँ। नंबर वन, कोर्ट ने पहली बात कुछ नया नहीं कहा है। अगर हम अपने पुराने बहुत सारे जजमेंट्स देखें तो बार बार कोर्ट ये कहता है कि सरकार या सरकार के जो भी पोजिशन होल्डर्स हैं उनकी आलोचना करना गुनाह नहीं होता है, सो लॉन्ग एज आपके भाषा से कोई हिंसा नहीं हो रही है या कोई ऑफेंस नहीं हो रहा है। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हो। मुझे इसी में 1983 का इंदिरा गांधी का एक जजमेंट याद आता है, जब एक हुजूम करके मैगजीन हुआ करती थी, उन्होंने इंदिरा गांधी की बड़ी कड़ी आलोचना करी थी और यही पूरा प्रोसीजर हुआ था, FIR हुई थी, उनको अरेस्ट करने की कोशिश करी गई थी जिन्होंने ये लेख लिखा था, पर तब भी कोर्ट ने कहा था कि आप सरकार की नीतियों का खुले दम से आलोचना कर सकते हैं और ये फैसले चलते आए हैं। पर ये जरूरी इसलिए है क्योंकि भले ही ये जजमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, समय के साथ क्या हुआ है, जब एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कॉन्सेप्ट होता है चिलिंग इफेक्ट का, जहां जब भी कोई नागरिक अपना अधिकार एक्सरसाइज करने जाता है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सरसाइज करने जाता है, एक डर होता है कि क्या कानून का मेरे खिलाफ उपयोग किया जाएगा मुझे इस अधिकार को एक्सरसाइज करने से रोकने के लिए। उसी सिचुएशन में ऐसे जजमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज ये एक संरक्षण देते हैं नागरिकों को कि आप अपना अधिकार जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं, न्यायालय स्टेप इन करेंगे अगर सरकार अपने प्रोविजंस का गलत उपयोग कर रही है, अगर पुलिस उसका गलत उपयोग कर रही है
1: जी।
2: तो ये जजमेंट उस सेंस में बहुत अच्छा सिग्नल देता है कि अगर सरकार इन कानूनों का दुरुपयोग करती है, अगर कोई हिंसा नहीं है उसको रोकने की फिर भी कोशिश करती है एक पीसफुल प्रोटेस्ट को या राइट टू प्रोटेस्ट को, तो वहां न्यायालय इंटरवीन करेगी, वहां वो लोगों के अधिकारों को बचाएगी।
1: मतलब स्वप्निल, इसे ऐसा समझा जाए कि राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो अधिकार है आम लोगों का। अब ये जो, लेकिन कई बार हमने देखा है कि बहुत सारी गिरफ्तारियां प्रोटेस्ट के दौरान इस तरीके से हुई हैं। अब डेमोक्रेसी के लिहाज से अगर देखा जाए, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में, तो ये कितना महत्वपूर्ण है फैसला?
2: जी बिल्कुल महत्वपूर्ण है, बिकॉज हमारे भारत के संविधान की सबसे बड़ी खासियत जो काफी संविधानों में नहीं है कि हमें अभिव्यक्ति की पूर्णतः स्वतंत्रता है, और जहां पे भी सरकार उस स्वतंत्रता पर रोक लगा सकती है वो बहुत ही लिस्टेड क्लियर ग्राउंड्स है जिन कारणों पे वो कर सकती है, और अगर वो कारण अप्लाई नहीं होते, जो बहुत हाई थ्रेशोल्ड है, आप मुझे बोलने से किसी छोटे रीजन से नहीं रोक सकते, आपके पास बहुत ठोस सबूत होना चाहिए कि या तो मैं राष्ट्र सुरक्षा पे मेरे बोलने से फर्क पड़ेगा या हिंसा हो सकती है या कोई मेरे बोलने से कोई कानून का अपराध हो सकता है, अगर वो चीजें मीट बहुत जनरली नहीं होती हैं, पर फिर भी हम देखते हैं कि मुकदमे फाइल कर दिए जाते हैं, तो उस सेंस में डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज इससे एक स्ट्रांग मैसेज जाता है कि अगर सरकार ऐसा कोई भी फैसला लेती है, प्रशासन कोई ऐसा फैसला देती है, तो कोर्ट

0: सबसे पहले ये चेक करेगी कि क्या उन लिमिटेड ग्राउंड्स पे उन कारणों का वहां पे उल्लंघन हुआ है. अगर नहीं हुआ है तो वो नागरिक के संरक्षण के लिए तुरंत आगे आएगी.
1: स्वप्निल, अब यहां पर एक और सवाल है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और कहां थिन लाइन क्रॉस हो गई, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगर हिंसा नहीं हुई, उकसावा नहीं हुआ, ये बहुत ही थिन लाइन है. इसे कैसे डिफाइन किया जाएगा ताकि लोग अपना अधिकार ये बचा भी सकें और अपने आप को कानून के पचड़े में फंसने से भी बचा सकें?
0: देखिए, अगर इस थिन लाइन को बहुत क्लियरली समझें तो आप एक नागरिक के तौर पर आपको सरकार की या सरकार का कोई भी पद संभालने वाले व्यक्ति की निंदा करने का पूरा अधिकार है. आप उसको कर सकते हैं. आप अगर थोड़े मजबूत शब्दों का प्रयोग भी करते हैं, कठोर शब्दों का प्रयोग भी करते हैं, कानूनन तौर पर आप ये कर सकते हैं. पर अगर आपके शब्द ऐसे हैं जिससे समाज आहत हो सकता है तो वो एक कानूनी अपराध है. या अगर आप कोई ऐसा भाषण दे रहे हैं जिससे भड़काऊ भाषण दे रहे हैं जिससे लोग भड़क सकते हैं और हिंसा हो सकती है, उस केसेस में होता है जब आपके खिलाफ कोई कार्यवाही करी जा सकती है. तो ये बैलेंस बहुत जरूरी है कि आप ऐसे कोई शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे बहुत समाज का बड़ा तबका आहत हो सकता है. अब इसमें समस्या ये है कि क्योंकि भारत में एक मुकदमा फाइल करना बहुत आसान है, कंप्लेंट फाइल करना बहुत आसान है, हो सकता है मेरे हिसाब से मैंने जो कहा है उससे कोई आहत नहीं होगा. पर यहाँ पे देखा ये जाता है कि उससे समाज पे क्या फर्क पड़ रहा है. तो हो सकता है मेरा वो इंटेंशन नहीं है पर समाज आहत हो सकता है. उसी में जरूरी है कि यहाँ पे न्यायालय इंटरवीन करके देखे कि मेरा इंटेंशन क्या था. क्या मैं चाहता था कि मैं किसी को भड़काऊं? क्या मैं चाहता था कि हिंसा हो? और वही टेस्ट है जो कोर्ट यहाँ पे अप्लाई करता है. वो इंटेंशन को देखता है, वो शब्दों को देखता है, उस बेसिस पे डिसाइड करता है कि क्या मेरा बोलने का ये मतलब था. और इस हाईकोर्ट के जजमेंट में भी कोर्ट ने यही बोला था. कोर्ट ने कहा था हमने पढ़ा उन्होंने क्या भाषण दिया था, वो सिर्फ एक प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमें उनके भाषण में ऐसा कुछ भी नहीं लगा जिससे हिंसा होगी. तो आप किस बेसिस पे उनको शहर से बाहर कर रहे हैं?
1: बिल्कुल. अब यहां पर एक और सवाल बनता है. हाल में हमने देखा कई पार्टियां आंदोलनों से निकल के आई जहां वो प्रोटेस्ट करती थी, धरने प्रदर्शन होते थे. अब इस तरह की पार्टियों के लिए इस बात के जो कोर्ट ने कहा है क्या मायने हैं?
0: ये बहुत जरूरी मायने हैं, बिकॉज अक्सर जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, अक्सर डर ये रहता है कि क्या अगर मेरे ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट में या मैं कोई आंदोलन कर रहा हूं उसमें कोई गलत इंसिडेंट होता है या मुझे चार्ज करके कोर्ट मेरे खिलाफ मुकदमा फाइल कर दिया जाता है तो क्या मेरा आंदोलन चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा. बट जब एक कोर्ट, एक हाई कोर्ट बहुत समय रहते एक तुरंत निर्णय देता है और सरकार को ना केवल उनके फैसले को रद्द करता है बट उनको ये सलाह भी देता है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, तो उससे प्रोत्साहन मिलता है कि इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी है और कोई है जो संरक्षण करेगा. बिकॉज सरकार साल भर साल, चाहे कोई भी सरकार हो, वो हमेशा कोशिश करती है कि आंदोलन ज्यादा ना हो पाए, ज्यादा प्रोटेस्ट ना हो पाए. तो हमारे पास ऑप्शन तो कोर्ट के पास जाने का ही है. और यहाँ उन्होंने ना केवल समय रहते फैसला दिया है, बिकॉज अक्सर आपने देखा होगा ये फैसले सालों साल लगाते हैं. तो एज अ नागरिक, मुझे एक नागरिक के तौर पर लगेगा फिर फायदा क्या है मेरे बोलने का अगर 3 साल बाद मुझे न्याय मिलेगा. यहाँ पे न्याय रिलेटिवली समय रहते मिल गया. तो उन पार्टियों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी एक अच्छा सिग्नल है कि अगर मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ तो मुझे बचाने के लिए एक न्यायालय है.
1: बिल्कुल. बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए. और अब वक्त आ गया आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले इस बार द लेंस में किस मुद्दे पर होगी चर्चा, जानते हैं मुकेश शर्मा से.
2: करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र अयोध्या का राम मंदिर, लेकिन आज वही मंदिर दान में कथित गड़बड़ी के आरोपों को लेकर सवालों के घेरे में है. 8 गिरफ्तारियां, SIT की जांच, मामला सुप्रीम कोर्ट तक और ट्रस्ट के 2 वरिष्ठ पदाधिकारियों के इस्तीफे. लेकिन क्या यह सिर्फ चोरी का मामला है या फिर देश के सबसे बड़े धार्मिक संस्थानों की जवाबदेही और पारदर्शिता पर उठे बड़े सवालों की शुरुआत? क्या इसका असर सिर्फ राम मंदिर तक रहेगा या फिर राम मंदिर आंदोलन से जुड़े संगठनों और करोड़ों श्रद्धालुओं के भरोसे पर भी पड़ेगा असर? इस पूरे विवाद की परतें खोलेंगे तथ्यों और संदर्भ के साथ. इस हफ्ते के द लेंस में देखिए शनिवार सुबह.
1: तो देखना ना भूलिए द लेंस. आज पॉडकास्ट में बस इतना ही. आज स्टूडियो ऑपरेट कर रहे थे अजीत और प्रोडक्शन गैलरी की कमान थी मेघल के हाथों में और इस शो को प्रोड्यूस किया मानसी दाश ने.

0: कहता है कि वो बाकी कहानी खुद समझे। इस बार ईरान अपनी कूटनीति में उसी सिनेमाई भाषा का इस्तेमाल कर रहा है जो उनकी फिल्मों को दुनिया भर में एक अलग पायदान पर खड़ा करता है। उसने बंदूक नहीं दिखाई, दुश्मन के मार गिराए ड्रोन नहीं दिखाए, मिसाइल के टुकड़े नहीं दिखाए। उसने बच्चों की तस्वीरों के जरिए सिर्फ खामोशी दिखाई। यह सिर्फ शोक नहीं था, यह शोक को संदेश में बदलने की कला थी। दूसरी तरफ है अमेरिका, जिसने 4 जुलाई को अपना 250वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, जिसमें हॉलीवुड की मसाला फिल्मों की तरह आतिशबाजी थी, अमरीकी झंडे थे, राष्ट्रवाद का जश्न था, अमरीका ही दुनिया का मसीहा है, यह संदेश था। अमरीका हर बार खुद को दुनिया का मसीहा बताता है, उसे साबित करने की पूरी कोशिश करता है, बार बार आजादी और लोकतंत्र की दुहाई देता है, लेकिन दुनिया के 106 देशों में लोकतंत्र है, आजादी है, इनमें से किसी के पास अमेरिका वाला घमंड नहीं है। अमेरिका ने दशकों से 4 जुलाई को सिर्फ अपना त्योहार नहीं बनाया, उसने इसे अपनी ताकत का प्रदर्शन बनाया। हॉलीवुड ने इसे दुनिया तक पहुंचाया। आतिशबाजी, झंडे, सैनिक, राष्ट्रगान, अमेरिका अपने जन्मदिन पर दुनिया को बताता है कि वो कौन है। लेकिन इसी 4 जुलाई को ईरान ने भी अपनी कहानी शुरू की। आतिशबाजी के सामने मातम, लाल, सफेद और नीले रंग के सामने काले और लाल झंडे।
1: The nicer you are, the faster you lose respect. Does that make sense? Sorry, can I just add one thing? Is it okay if I... Let me tell you exactly what's going to happen tonight. You're going to hear me say articulation training and your brain is going to shut off. Too complicated, not for me, I'm too old for this, and you're going to scroll. And in 28 days, while other people are walking into meetings and getting asked for their opinion, you'll be doing the same thing you've been doing for years. Going quiet, waiting to be noticed. You're the smartest person in the room that nobody listens to, not because you're lazy, because nobody ever taught you that how you speak is a skill you can train. I'm not 20 anymore, I'm 47. 9 minutes a day. 4 months ago, my boss never asked my opinion. 3 months ago, I got promoted. Now he quotes me in meetings. Nobody knows that's my secret. If you want to just look busy, read books. If you want to actually sound smart and take the lead, train your speaking skills. Or scroll and stay invisible. Tap the screen, take the test, and start tomorrow.
2: Most people think communication is just chit-chat, but in reality, it's one of the most powerful skills you can master. The way you speak reveals how you think, how confident you are, and how other people perceive you. Once you understand how to train it, you can strengthen your presence, express yourself clearly, and connect with anyone. Ready to become unrecognizable? Take the quick test now and get a personalized communication mastery plan. Just tap the screen and get started.

जश्न के सामने जनाजा और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारों के सामने रोती हुई माएं। ईरान ने आधिकारिक तौर पर यह तो नहीं कहा कि उसने 4 जुलाई का दिन अमेरिका को जवाब देने के लिए चुना, लेकिन तारीखों की भी राजनीति होती है और ईरान राजनीति खूब समझता है। 4 जुलाई को अमेरिका अपनी आजादी का उत्सव मनाता है। ईरान उसी दिन दुनिया को याद दिला रहा था कि आजादी की बातें करने वाला देश किसी दूसरे देश के आसमान से क्या बरसा कर गया है। यानी एक तरफ अमेरिका अपनी कहानी सुना रहा था तो दूसरी तरफ ईरान अमेरिका की कहानी पर सवालिया निशान लगा रहा था। और तस्वीरों की दुनिया में कई बार सवाल जवाब से कहीं ज्यादा देर तक जिंदा रहता है। खमेनेई की अंतिम यात्रा 6 दिन तक चलेगी। तेहरान से शुरू हुई यह यात्रा कौम जाएगी, फिर इराक के नजफ,

साथ रहा करते थे। ईरान की पवित्र किताब ज़ेन अवेस्था की भाषा संस्कृत से बहुत ज्यादा मिलती है। रिश्तों का एक लंबा इतिहास है, उस पर मैं अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन यह समझ लीजिए कि बीच में पाकिस्तान है, वरना सैकड़ों सालों तक हमारी सरहदें ईरान से मिलती रही हैं। और उसी ईरान के सबसे भावुक पल में शामिल होने के लिए भारत ने विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा और बिहार के राजपाल सैयद अता हसनैन को भेजा। भारत का प्रतिनिधिमंडल जाना जरूरी था। भारत के शिया परिवारों के लिए ईरान सिर्फ एक विदेशी देश नहीं है, धार्मिक भावनाओं से जुड़ा नाम भी है। लेकिन सवाल प्रतिनिधिमंडल के जाने का नहीं है, सवाल उसके राजनीतिक वजन का है। भारत ने सम्मान भेजा, लेकिन भारत ने राजनीतिक संदेश भी उतनी मजबूती से भेजा है क्या? ईरान ने प्रधानमंत्री मोदी समेत भारत के कई बड़े राजनीतिक नामों को न्योता भेजा था, लेकिन इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड के दौरे की वजह से प्रधानमंत्री का जाना संभव नहीं था। लेकिन न विदेश मंत्री गए, न कैबिनेट का कोई बड़ा चेहरा गया, जो कि बहुत आसानी से किया जा सकता था। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने भी कहा कि भारत के दल में और वजन होना चाहिए था, लेकिन भारत ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या वॉशिंगटन का खौफ इतना ज्यादा है, या इस डर की वजह से कि कहीं अमेरिका और इसराइल नाराज ना हो जाएं? कोई आधिकारिक कागज ये नहीं कहता कि भारत ने अमेरिका के दबाव में छोटा या हल्का प्रतिनिधिमंडल भेजा, लेकिन कूटनीति में कई बार सबसे बड़ा बयान वही होता है जो आप नहीं देते हैं। और भारत ने उस ईरान को नजरअंदाज करने की कोशिश की है जिससे भारत सस्ते दामों पर तेल खरीदता रहा है, रुपए में पेमेंट करता रहा है। चाबहार भारत के लिए सिर्फ बंदरगाह नहीं है, मध्य एशिया तक पहुंचने का रास्ता है, ऊर्जा का सवाल है, व्यापार का सवाल है। लेकिन क्या ट्रंप को खुश करने के लिए भारत ने इन सारे सवालों को ताक पर रख दिया? पिछले महीने भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई G7 के दौरान। मोदी ट्रंप को एक्सेलेंसी एक्सेलेंसी कहकर संबोधित करते रहे, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप मोदी से ऐसे बात कर रहे थे जैसे किसी स्कूल का प्रिंसिपल उस स्कूल के एक होनहार छात्र से बात करता है। वो कभी मोदी को ब्यूटीफुल मैन कहते हैं, कभी ये कि मोदी पर हमला हुआ तो अमेरिका बचाने आ जाएगा। ट्रंप कूटनीति की सबसे हल्की जुबान का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन भारत का मीडिया गदगद था। बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप की तारीफ से खुश होकर टैरिफ के डर से हम अपने दोस्तों को भूल जाएं और नेतन्याहू और इसराइल के साथ खड़े होने की जिद में हम अलग थलग पड़ जाएं? यहां मैं आपको ध्यान दिला दूं कि हमारा कल का वीडियो है टूटा नेतन्याहू का अहंकार, इसराइल का बंटाधार। उसे जरूर देखिएगा, बहुत सी बातें समझ में आएंगी। और जिस ट्रंप पर हम वारे वारे जा रहे हैं उसकी भाषा पर भी नजर डालिए। 4 जुलाई को अमेरिका जश्न मना रहा था, उधर ईरान शोक में था। ट्रंप ने ईरानियों को देखा और कहा, मुझे लगता था लोग खमेनेई से नफरत करते हैं, शायद ये नकली आंसू हो। यही ट्रंप की सबसे बड़ी राजनीतिक कमजोरी है, वो हर भावना को सौदे की तरह देखते हैं, हर भीड़ को अपने पक्ष या विपक्ष की गिनती की तरह देखते हैं, हर देश को दबाव डालकर चलाए जाने वाला सौदा समझते हैं। लेकिन किसी देश पर हमला होने के बाद शोक सिर्फ नेता के लिए नहीं होता, शोक घरों के लिए होता है, शोक बच्चों के लिए होता है, शोक उस अपमान के लिए होता है जो किसी बाहरी ताकत के हाथों मिलता है। ट्रंप ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि ईरान के बड़े नेता एक ही जगह पर मौजूद हैं, अमेरिका चाहे तो एक ही वार में सबको खत्म कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि फिर हम बातचीत किससे करेंगे?

0: सोचिए, एक देश का राष्ट्रपति अंतिम संस्कार के बीच खड़े नेताओं को निशाना बनाने की बात कर रहा है और उसी सांस में बातचीत की भी बात कर रहा है। ये कूटनीति नहीं, वीडियो गेम की भाषा लगती है। पहले सबको मार दो, फिर पूछो किससे बातचीत करोगे। ट्रंप समझ नहीं पा रहे कि खमेनेई की मौत ने ईरान को एक नया भावनात्मक हथियार दिया है, शहादत का, शोक का, बदले का। और ईरान ने ट्रंप को तोप से जवाब नहीं दिया, ईरान ने ट्रंप को एक बच्ची की तस्वीर से जवाब दिया। और कभी कभी दुनिया के सबसे बड़ी ताकत के सामने सबसे खतरनाक चीज मिसाइल नहीं होती, एक ऐसा सवाल होता है जिसका जवाब उसके पास नहीं होता। इस फ्यूनरल को सिर्फ खमेनेई की विदाई समझना भूल होगी। ये ईरान का संदेश है कि हम पर हमला हुआ लेकिन हमारी कहानी अभी बाकी है। ये संदेश है कि हमारी गलियों में मातम है लेकिन हमारी आवाज बंद नहीं हुई है। ये संदेश है कि हमें दुनिया सिर्फ परमाणु कार्यक्रम, मिसाइलों और हिजबुल्ला के चश्मे से न देखे बल्कि एक ऐसे देश के तौर पर देखे जिसकी हस्ती को मिटाना आसान नहीं, एक ऐसा देश जो मिसाइल की भाषा बोल सकता है और जिसे तस्वीरों से अपना दर्द बयां करना भी आता है, एक ऐसा देश जो भारत की तरह कह सकता है कुछ तो बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ये वीडियो सबके साथ साझा कीजिए, हमारे सबसे अच्छे वीडियोस में है ये। इसकी तैयारी में मैं कई बार भावुक भी हुआ। आपको ये कैसा लगा जरूर बताइएगा। कल हमारे पास ढेरों संदेश आए, उनमें एक संदेश सरनजीत गिल साहब का था जो वैंकूवर में है, उनको धन्यवाद। अफसर मोहम्मद ने पूछा कि क्या मैं टीवी चैनल पर दिखता रहूंगा, जरूर एबीपी न्यूज पर दिखता रहूंगा। कल मैं सीधा सवाल में था। जहीरुद्दीन ने बताया कि वो आज तक के शुरुआती दिनों से मुझे देख रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे हर रिपोर्ट के बाद तब मैं कहता था दिबांग दिल्ली आज तक। शालू ने सुझाव दिया कि मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने के बजाय लोगों को उस पैसे से बीमार गरीब बीमार लोगों का इलाज करवाना चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव है। ये भी पता चल रहा है कि आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन नहीं दबा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? आंकड़ा बताता है कि सिर्फ 12% लोग ये कर रहे हैं। ये यूट्यूब के आंकड़े हैं, मैं नंबर की बहुत ज्यादा परवाह नहीं करता, लेकिन इन्हीं नंबरों के सहारे ये तय होगा कि आगे हम वीडियो और बना पाएंगे या नहीं। धन्यवाद।
1: फरवरी में अमेरिका और इसराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों की मौत हो गई थी, मगर इनका अंतिम संस्कार अभी तक नहीं हुआ है। करीब 4 महीने बाद 3 जुलाई से अंतिम संस्कार की रस्में शुरू हुई, मगर इससे जुड़े कई सवाल हैं, जैसे इतने समय तक शवों को कैसे संरक्षित करके रखा जा रहा है, शव आखिर इराक क्यों ले जाए जाएंगे और अंतिम संस्कार में इतनी देरी की वजह क्या है। आज पहली खबर में इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। बीबीसी उर्दू के मुताबिक अंतिम विदाई की रस्में तेहरान के एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र इमाम खोमैनी मस्जिद में आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। ईरान इस अंतिम विदाई समारोह को सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं बल्कि जंग के बाद अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक ताकत के बड़े प्रदर्शन के तौर पर भी देख रहा है। तेहरान में इन रस्मों की निगरानी कर रहे IRGC के वरिष्ठ कमांडर ब्रिगेडियर जनरल हसन हसनजादे ने कहा कि प्रशासन को 1-1.5 करोड़ लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, जबकि ये संख्या 2 करोड़ तक पहुंच सकती है। सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरामीनिया ने कहा कि सुरक्षा और सहायता के लिए 10,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों और 10 सैन्य अस्पतालों को तैनात किया गया है। इस दौरान 1.5 लाख पुलिसकर्मी अलर्ट पर रहेंगे। 6 जुलाई को तेहरान और 9 जुलाई को मशहद का हवाई क्षेत्र बंद रहेगा। शव को इतने दिनों कैसे संरक्षित किया गया? फॉक्स न्यूज डिजिटल ने एक काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट डॉक्टर ओमर मोहम्मद के हवाले से कहा, इसके लिए लगभग निश्चित रूप से रेफ्रिजरेटेड कोल्ड

0: स्टोरेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, ना कि एम्बामिंग का, क्योंकि इस्लाम में केमिकल एम्बामिंग यानी रासायनिक लेप की मनाही है। उन्होंने कहा, शिया कानून में खास मामलों में दफनाने में देरी करने और ठंड में शव को सुरक्षित रखने की इजाजत है, और सुप्रीम लीडर के लिए धार्मिक अधिकारियों से छूट आसानी से मिल जाती है। ये भी माना जा रहा है कि अमेरिका और इसराइल के साथ 40 दिनों तक चली जंग के कारण अंतिम विदाई की रस्मों को टाला गया था। बीती 15 जून को अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों के संघर्ष विराम को लेकर एक MOU पर हस्ताक्षर हुए थे। इससे दो दिन पहले ईरान ने अंतिम विदाई के शेड्यूल के बारे में जानकारी दी थी। बीती 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर के परिवार के कई सदस्य मारे गए थे, जिनमें उनके दामाद, एक पोता, एक बेटी और मोजतबा खामेनेई की पत्नी शामिल थी। शव इराक क्यों ले जाए जा रहे हैं? मक्का और मदीना के बाद इराक के नजफ और करबला शिया इस्लाम के सबसे पवित्र शहरों में गिने जाते हैं। नजफ में पहले शिया इमाम और पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई इमाम अली का रोजा है। वहीं करबला में इमाम हुसैन का मजार है, जिनकी करबला की जंग में शहादत शिया पहचान और धार्मिक परंपरा का केंद्रीय आधार मानी जाती है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि इन रस्मों का आयोजन इराक के कबाइली नेताओं, धर्मगुरुओं, बुद्धिजीवियों और राजनीतिक हस्तियों के अनुरोध पर किया गया। 28 जून को बगदाद की यात्रा के दौरान विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने इन कार्यक्रमों के आयोजन में सहयोग के लिए इराकी प्रशासन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये दोनों देशों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्तों की मजबूती को दर्शाते हैं। उन्होंने तैयारियों पर चर्चा के लिए नजफ और करबला के गवर्नरों से भी मुलाकात की। इराक सरकार इस देश में ऐसे आयोजनों के मुख्य आयोजकों में से एक है। मेहर समाचार एजेंसी के अनुसार नजफ और करबला के राज्यपाल इराकी परिवहन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय उन संस्थानों में शामिल हैं जो इस कार्यक्रम की देखरेख करेंगे। तेहरान, कौम, नजफ और करबला में समारोहों के बाद अंतिम चरण मशहद में आयोजित किया जाएगा और अली खामेनेई को 8वें शिया इमाम के मकबरे में दफनाया जाएगा। आयोजकों ने कहा है कि अंतिम विदाई के बाद 40 दिनों तक विभिन्न प्रांतों में धार्मिक सभाएं, प्रार्थनाएं आदि आयोजित की जाएंगी और अगले साल तक भी कार्यक्रम और सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे।
1: सो ये सी जी अज वैसे काफ़ी डिटेल दे वैसे गलबात हो गई है, क्योंकि खमनाई उन्हां दी जड़ी विदाई है उन्होंने लैके दुनिया भर के किस तरीके की हालात बन रहे हैं, प्लस वो नाल नाल जो आप अमेरिका की गल करते हैं भी अमेरिका ने किदा 250th बर्थडे जरा मनाया, तो जिस तरीके की भाषा तो जिस तरीके का ट्रंप का स्टाइल सीगा, इवन ट्रंप ने पिछे अपनी फोटो जी वे लाई है नाल तो अपने आप नू मशहूर करने की पूरी गलबात की। सो इस तरह का सारा सिस्टम जड़ा है वो दिखाया गया तो बहुत वधिया तरीके दे नाल ये प्रोग्राम जड़े है जी होए तो लोगों ने काफ़ी अप्रीशिएट किया। वैसे तो काफ़ी गलबात आप ही सुनी ली है भी की कुछ होया यह माहौल दे विच, तो मेरे दसन तो भी ज़्यादा आप डिटेल दे विच समझ सकें, क्योंकि अपना काफ़ी भाईचारा जड़ा उन्हों का ध्यान हमेशा ही इन चीज़ों वाले पास भी लगे रहता भी की दुनिया चल रहा है तो कित्थे कित्थे आपां जड़ियां दुनियादारी जड़ी है जी वो चलती पई है, तो स्पैशली इंटरनेशनल खबरां जड़ियां ने वो काफ़ी ज़्यादा रंग लैके आंदियां। अज के प्रोग्राम च आपां अपनी गलबात जड़ी है जारी रखांगे, थोड़ा जिहा वैदर के बारे अपडेट कर लीए तो फिर मैं थोड़ी जिहा गल्लां जड़ियां ने तुहानूं होर भी सुनावांगे, क्योंकि जो कुछ स्टैम्पिड ब्रेकफास्ट चल रहे ने उन्होंने रिलेटड भी काफ़ी खबर जड़ियाँ आ रही हैं, तो ये खबर जड़ियाँ ने मंडे, ट्यूजडे, थर्सडे, फ्राइडे तुसी शाम 7 बजे तो लैके 8 बजे तक सुनते हो, इस तो अलावा संडे 1 बजे तो लैके 5 बजे तक ये प्रोग्राम तुहाडी सेवा दे विच पेश किए जाते हैं। इन प्रोग्रामों दे विच मैं तुहाडा होस्ट ते दोस्त रजेश ते अपने बाकी दे दोस्तां दे नाल ये प्रोग्राम जिहड़ा वो लैके आना, तो हाले भी जिन्होंने कहते ना भी थंडरस्टॉर्म की वार्निंग जी लगातार चल रही है, वैसे बारिश काफ़ी हो रही है जिते जिते रेड स्टोन, वैसे मैं जा नहीं सकया एडरी वाले प्रोग्राम दे विच मैं जा सकया, उहदा मैसेज मैं फेसबुक पर भी लाइव करता सी, पर सवेरे सवेरे एक दूसरा हैरीटेज पार्क के अंदर बड़ा वधिया प्रोग्राम सीगा उत्थे भी जाण दा मौका मिलिया, तो उहदे बारे भी जानकारी दे दांगे तुहानू। नाल दी नाल आपां थोड़ी जी क्विकली वैदर की अपडेट कर लिए, क्योंकि 20 डिग्री टैंपरेचर जरा कि राइड नो अज वो होना, बट 16 डिग्री हो चुके पहला।

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देती है मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदा लिसनिंग टू कैलगरीज मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated. Book your live promotion today with Sabrong Radio. Your brand, on air and on ground.

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए। सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर, जहां होता है एनर्जी एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन। चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग, कोई खास इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन, हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते, हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं। हमारी टीम पहुंचती है आपके पास, लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में। ज्यादा पहचान, ज्यादा भरोसा, ज्यादा ग्राहक। अपने बिजनेस को बनाइए खास, दिखाइए, सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए। आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ, आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी। Monday, Tuesday, Thursday and Friday, 7 to 8 p.m. Sunday, 1 to 5 p.m.
4: The time is 2 p.m. You are listening to Fairchild Radio, CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.

0: ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਸ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए। सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर, जहां होता है एनर्जी एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन। चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग, कोई खास इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन, हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते, हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं। हमारी टीम पहुंचती है आपके पास, लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में। ज्यादा पहचान, ज्यादा भरोसा, ज्यादा ग्राहक। अपने बिजनेस को बनाइए खास, दिखाइए, सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए। आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ, आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी। Monday, Tuesday, Thursday and Friday, 7 to 8 p.m. Sunday, 1 to 5 p.m.
4: Asia Pacific Immigration Consulting Limited. Student visa, visitor visa, super visa, LMIA applications, family immigration, provincial nominee application, ate citizenship application vich lamba tajruba te maharat rakhda hai. Tuhadi sahulat layi main Maninder Singh Tillo ate Inderjot Kaur Tillo ikko chhat he immigration ate insurance diyan sewawan pradan karde han. Sanu sampark karn layi 403-225-1111. Maninder Singh Tillo, Asia Pacific Immigration.

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल।

0: इस कहानी ने मुझे इतने अंधेरे में धकेल दिया कि लगा काश मैं इस पर काम न करती।
1: Oh my God, this is my God।
2: जो भी आपने देखा वह जाहिर तौर पर बहुत बहुत परेशान करने वाला है।
3: नमस्ते। 3.5 अरब लोग हमारा कम से कम एक ऐप हर रोज इस्तेमाल करते हैं। सोचकर ही मेरा दिमाग चकरा जाता है। इनमें से 0.5 अरब लोग तो भारत में ही हैं।
4: इंडिया अलोन।
0: क्योंकि आप इसे खरीद रहे हैं, देख रहे हैं, ये वजह है कि दुनिया में किसी बच्चे का शोषण हो रहा है।
5: Text on the ad which says she has been unboxed and reduced to tears with a big weapon.
6: My opinion is I don't.
7: मेरे ख्याल से वो कहीं भी यूजर के बारे में नहीं सोचते, इसलिए मैंने कंपनी छोड़
6: दी। Company.
8: This is a serious enough.
2: ये इतना गंभीर मुद्दा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट को खुद इसका संज्ञान लेना चाहिए।
8: तो कॉग्निसेंस।
6: No.
7: नहीं, ये मार्क ज़करबर्ग के रहते नहीं हो सकता।
9: Sir, you headed the ads business. Sir, you were the director before you became head of Meta India. Sir, will you please give us an answer, sir?
10: I think I'm done.

0: हमारी सोशल मीडिया फीड संकरी अंतहीन सुरंगों की तरह बनी है जो हमें और देखने को ललचाती हैं इनके पीछे काम कर रहे एल्गोरिथम चुपचाप सीखते हैं कि क्या हमारा ध्यान खींचेगा मैंने कई साल सोशल मीडिया के छिपे नुकसानों पर रिपोर्टिंग की है लेकिन जो मुझे अब पता चलने वाला था उसके लिए मैं कतई तैयार नहीं थी मैं इसे तलाश नहीं रही थी ये शुरू हुआ मेरी फीड पर आए इस वीडियो
1: आज मैंने दो लाल अंगूर लेकर उनका रस निकाल दिया
2: आज मैं इन दो नींबू को दबाकर उनका गुलाबी रस निकाल दूंगी
0: जब मैं मुस्कान को देख रही थी इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम मुझे देख रहा था वो मुझे और इन्फ्लुएंसर दिखाने लगा ये सब रिकमेंडेशंस मुझे बेचैन करने लगे हर स्क्रॉल के साथ नए वीडियो का कंटेंट और अश्लील होता चला गया जैसे ये और ये और ये मेरी फीड ऐसे वीडियो से भर गई थी जिन्हें मैंने कभी सर्च नहीं किया मुझे प्लेटफॉर्म पर टिकाए रखने के लिए इंस्टाग्राम एल्गोरिथम कहां तक जाएगा इस इन्वेस्टिगेशन के लिए मैंने एक नया फोन लिया दूसरे नाम से अकाउंट बनाया और इन महिलाओं को फॉलो करने लगी सप्ताह भर में इंस्टाग्राम अपना बुरा चेहरा दिखाने लगा बदन दिखाने वाले कपड़े पहने इन्फ्लुएंसर्स के बीच मैंने एक एड देखा इसमें नंगे बदन पुरुष और स्त्री सेक्स कर रहे थे इंस्टाग्राम की गाइडलाइन कहती है एड में नग्नता नहीं हो सकती लेकिन ये यही नहीं थमा कुछ ही दिनों में एड में बच्चे दिखाए जाने लगे जिन्हें बड़ों के साथ यौन संबंध बनाने वाले हालात में दिखाया जा रहा था मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम ने मुझे एड में न सिर्फ पॉर्न दिखाया बल्कि बच्चों के साथ यौन शोषण की सामग्री यानी सी सैम ज्यादातर एड का ऑफर साफ था वीडियो के लिए क्लिक करें जो लिखा था वही बेचा जा रहा था माँ बेटा भाई बहन बच्चों के वीडियो रेप वीडियो और फोर्स वीडियो मैं हैरान रह गई एड पर क्लिक किए बिना ही इंस्टाग्राम ने मुझे चाइल्ड वीडियो दिखाया मेरी फीड में आए एक एड में करीब 12 साल की उम्र के स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक लड़का लड़की को यौन संबंध बनाते दिखाया गया था मैं नजरें हटाना चाहती थी लेकिन जानती थी मैं किसी जरूरी और गैर कानूनी चीज की पड़ताल कर रही थी इसे उजागर करने के लिए मुझे मालूम करना था कि ये एड कहां ले जाएंगे लेकिन उन पर क्लिक करने से पहले मैं देश की साइबर पुलिस से बात करना चाहती थी
3: आई एम इन हैदराबाद अ सिटी इन द रेस टू बिकम इंडिया सिलिकॉन वैली इट ऑल्सो हाउसेज द टॉप टीम ऑफ साइबर कॉप्स दैट क्लेम टू हैव अरेस्टेड मोर देन 400 पीपल लास्ट ईयर फॉर वॉचिंग एंड शेयर

0: Airing sexually explicit material featuring children.
1: ये उनका हेडक्वार्टर है और उनकी बॉस हैं शिखा गोयल.
2: कम
1: आइए. ये हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है. ये एक प्रतिबंधित जगह है. यहाँ वही लोग दाखिल हो सकते हैं जो यहाँ काम करते हैं. हम अंदर जाएंगे लेकिन कानूनी निर्देश की वजह से वे कंटेंट नहीं देख पाएंगे जिनकी पड़ताल हो रही है. तो जो भी टिप लाइन आ रही हैं, वे इनकी स्क्रीन पर दिखाई देंगी और फिर ये उस कंटेंट को देखकर ये तय करेंगे कि उस पर आपके विभाग को आगे कार्रवाई करने की जरूरत है या नहीं.
3: यहाँ करीब 12 लोग हैं. ये पहली स्टेज पर काम कर रहे हैं. उसके बाद अगर सीसैम पाया जाता है तो हम संदिग्ध की प्रोफाइल बनाएंगे और किसी भी सुराग की जानकारी पुलिस थानों में देंगे.
4: अगर विक्टिम चाइल्ड है तो हमें अकाउंट का नाम, उसकी उम्र, आईपी एड्रेस सब मिल जाता है. संदिग्ध का भी प्लेटफॉर्म भी लिखा रहता है. इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, जो भी ईएसपी प्लेटफॉर्म हो उसकी जानकारी भी साथ में होती है.
1: इन प्लेटफॉर्म पर बिक रहे इस मटेरियल के बारे में आपको सबसे हैरान परेशान करने वाली क्या बात पता लगी? सीसीएम की एक सबसे बड़ी चुनौती है उसका बहुत आसानी से मिल जाना. एक प्लेटफॉर्म पर हमने पाया कि सिर्फ 30 रुपए में एक क्लिप पाई जा सकती है. कई लोग जिन्हें हम गिरफ्तार करते हैं वे कहते हैं कि वे तो सिर्फ देख रहे थे. वे अपराधी कैसे हो सकते हैं? वे कहते हैं मैंने ये नहीं किया, मैं बच्चे से नहीं मिला, मैंने बच्चे को छुआ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है. आप किन्हें पकड़ पाते हैं? जो व्यक्ति इन मटेरियल को बना रहा है, जो व्यक्ति इन मटेरियल को बेच रहा है.
5: It is the person who is viewing.
1: जो व्यक्ति उसे देख रहा है यानी खरीदार. क्योंकि पहले तो सीसीएम देखना अपराध है. दूसरी बात, क्योंकि ऐसा सामान खरीदने वाले कोई हैं, ग्राहक हैं, इसलिए तो ये बनाया जा रहा है ना? ये इकोनॉमिक्स है यानी डिमांड और सप्लाई.
5: इकोनॉमिक्स, इट्स अ डिमांड एंड सप्लाई थिंग. व्हिच इज द प्लेटफॉर्म?
1: वे कौन से प्लेटफॉर्म हैं जिन पर बच्चों के यौन शोषण की वीडियो देखने वाले सबसे ज्यादा हैं?
5: द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टिप लाइन.
1: हमें सबसे ज्यादा टिप लाइन इस वक्त इंस्टाग्राम और फेसबुक से मिल रही है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वही सबसे ज्यादा है. अगर उनका एल्गोरिदम बच्चों के यौन शोषण के वीडियो ट्रैक करने में अच्छा होगा तभी हमें ज्यादा अलर्ट मिलेंगी.
5: Obviously, your the more alerts will be generated.
1: But just the fact that. लेकिन ये material Instagram और Facebook पर है, इसलिए platform की भी तो कुछ जवाबदेही तय होनी चाहिए.
5: Platform
1: खुद ही तो बता रहा है, क्योंकि tip line platform के बनाए algorithm के जरिए ही तो आ रही है. बच्चों के यौन शोषण को दर्शाने वाले ad के बारे में क्या कहेंगी? क्या वे भी आपको report किए गए हैं?
5: I don't think so.
1: मेरे ख्याल से तो नहीं. अब तक ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है. लेकिन हाँ, अगर ऐसा है तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है.
0: Meta, the parent company of Instagram and Facebook, is identifying CSAM and reporting it to the police. Then why aren't the police seeing the ads that are flooding my Instagram feed? Ads that are featuring the same sexual abuse. Is Meta scanning or reporting content that it gets paid to promote?
1: इसकी पड़ताल के लिए मुझे Meta का ad business समझना होगा.
6: There have to be ads either way because we have to make money and make a profit.
7: The basic end goal here is any business can come to us, say what their objective is, tell us how much they're willing to pay to achieve those results, connect their bank account. And then we just deliver as many results as we can.
1: जैसे जैसे Meta के प्लेटफॉर्म पर एड का बिजनेस मुनाफा देने लगा, वैसे ही सवालों के घेरे में भी आने लगा.
8: The Wall Street Journal's reporting shows that dozens of ads marketing illegal substances continues to run on both Facebook and Instagram, and those ads steered users to an online marketplace for illegal drugs.
1: Meta ने कहा वो इसके खिलाफ कानूनी एजेंसियों के साथ काम कर रहा है.
9: Upon viewing internal documents from Meta, Reuters reported the company made around $16 billion in revenue by running online ads for scams and banned goods.

0: मैं जाने कहा कि वे धोखाधड़ी और ठगी को जड़ से हटाने पर केंद्रित हैं और रॉयटर्स ने जो दस्तावेज देखे हैं वे सीमित तस्वीर पेश करते हैं। लेकिन ये मेटा के गैर कानूनी ड्रग्स या ठगी के एड्स प्लेटफॉर्म पर चलाने की बात नहीं है, ये बच्चों के यौन शोषण वाले एड के बारे में है। और जानकारी की तलाश में मैं राजधानी दिल्ली में हो रही भारत की सबसे बड़ी एआई समिट में गई, जहां मेटा बातचीत के केंद्र में था।
1: हमारी परिकल्पना है पर्सनल सुपर इंटेलिजेंस, एआई जो आपको, आपके मकसद, आपकी पसंद जानता है और आप जो भी करना चाहते हैं उसमें मदद करता है। वह आपके लिए हाजिर है, आप जो भी हों, जहां भी हों।
0: मेटा का दावा था कि अगर आप अचार
2: गर्मजोशी समझदारी ते प्यार नाल ओ तुहाडे परिवार नू कंफर्टेबल ते वेल केयर्ड फील करवाउण लई हमेशा तैयार है।
3: हुण तुसी उनां नाल इंग्लिश, हिंदी, उर्दू ते पंजाबी विच वी गलबात कर सकदे हो, ताकि तुसी घर वर्गा एहसास महसूस करो।
2: नवे पेशेंट्स हुण एक्सेप्ट हो रहे ने, अज ही अपने परिवार लई फैमिली डॉक्टर सिक्योर करो।
3: कॉल करो 5873606890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक, वॉक-इन्स सवेरे 9 बजे तो शाम 6 बजे तक।
2: सानू मिलो किंग्स व्यू बुलेवर्ड ते या कॉल करो 5873606890।
3: थोड़े परिवार दी सेहत साड़ी जिम्मेदारी।

0: ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0200-3400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890-687-360-6890। लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक,
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, लिसनिंग टू कंट्रीज मोस्ट पॉपुलर रेडियो, रेडियो सबरंग 94.7
4: एफएम। टेक योर बिजनेस बियॉन्ड।
0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ

0: نہ صرف امریکہ آزاد ہے بلکہ مادر پدر آزاد ہے. جڑے پڑھے لکھے امریکی نے وہ تمہیں دسن گے بھی امریکہ نے دنیا نو جنگاں تو علاوہ ہور بھی بہت کچھ دیتا ہے. میکڈونلڈ امریکہ دا ہی تحفہ ہے, مکی ماؤس تے سپائڈر مین تے بیٹ مین ساری دنیا دے بچیاں دا جی پرچاؤندے نے. ہر سال نویں آئی فون دی سوغات بھی پوری دنیا نو وڈی جاندی ہے. 250 سال تو امریکہ دا رونا اکو ہی ہے, اسی تہانوں آزاد کرانا چاہنے ہاں, تہاڈے تے بم سٹنے ہیں, تسی ساڈا شکریہ نہ ادا کردے ہو بلکہ اگوں ویر جاندے ہو. اگر تسی پرانیاں امریکی بلیک اینڈ وائٹ فلماں ویکھیاں ہون تے انہاں وچ ایک برتھ ڈے سین ہوندا ہے جہدے وچ کوئی کیک والی تھالی چک کے کسے دے منہ تے مار دیندا ہے. اینوں پائی فائٹ بھی کہندے نے. اے امریکہ دی عظیم تہذیب دا حصہ بھی ہے. پھر سارے ایک دوسرے دے منہ تے کیک والیاں تھالیاں ماردے نے تے ہستے رہندے نے. جے امریکہ نے واقعی امریکہ نو گریٹ بناونا ہے تے اپنی برتھ ڈے انج ہی مناؤن, کیک والیاں تھالیاں چکو, ایک دوسرے دے منہ تے سٹو تے باقی دنیا دی جان چھڈ دیو. رب راکھا.
1: ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ. ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ. ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਠੰਡਕ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਯੂਰਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਆ. ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੀ.
2: ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੋਂ ਮੇਂ ਸਜੀ ਧਜੀ ਆਪਣੇ ਦੁਲਹੇ ਕੇ ਪਾਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. मैक्सिको के एक शहर सान पेड्रो हुआ मेलुला में एक सालाना आयोजन होता है जिसमें एक कैमन की शादी शहर के मेयर से कराई जाती है. कैमन असल में मगरमच्छ जैसा दिखने वाला एक सरीसृप है जिसका संबंध एलिगेटर्स की एक प्रजाति से है. कैमन से शहर के मेयर की शादी की परंपरा यहां पर सदियों पुरानी है. असल में कैमन को यहाँ धरती माता का प्रतीक मानते हुए पूजा जाता है और मेयर से उसकी शादी को इंसान और दैवीय शक्तियों के मिलन के तौर पर देखा जाता है. और इस बीच दुल्हन अपने दूल्हे यानी मेयर डैनियल गुटेरेज के पास पहुंच गई है और उन्होंने खुशी खुशी अपनी दुल्हन को कबूल कर लिया है. है ना मजेदार परंपरा. अगर आपके इलाके में भी जानवरों की शादी को लेकर ऐसा कुछ उत्सव होता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा. और अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि आपके लिए आज हमारे पास क्या क्या है. यूरोप में बढ़ी गर्मी, लोग पंखे और एसी खरीदने के लिए उमड़े. कश्मीर में गायब हो गई 300 से ज्यादा झीलें. यूक्रेन में युद्ध के बीच ड्रोन की केबलों से पक्षी बना रहे हैं अपने घोंसले. और आखिर में मिलेंगे एक नन्हे से जिराफ से. जब हम कहते हैं कि यहाँ जर्मनी में तापमान 35, 36 या आजकल तो 40 डिग्री सेल्सियस को छूने लगा है और बहुत गर्मी है, तो भारत में हमारे दोस्त कहते हैं बस इतने में ही हालत खराब हो गई, हमारे यहाँ तो 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा रहा है तापमान. तो बात यह है कि गर्मी का असर सब जगह एक जैसा नहीं होता है. यानी 40 डिग्री सेल्सियस तापमान का मतलब भारत और जर्मनी के लिए अलग अलग होगा. आपको कितनी गर्मी लगेगी ये बात कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे कि हवा में नमी कितनी है, आपके शरीर को गर्मी सहने की कितनी आदत है, या फिर दिन कितने लंबे हैं, सूरज कितनी देर तक निकलता है. जैसे कि जून जुलाई में जर्मनी में सूरज सुबह 5:30 बजे निकल आता है और उसके छिपने का समय होता है रात के करीब 9:45 बजे, यानी 16 घंटे से भी लंबा दिन. एक और बात, जर्मनी के ज्यादातर घरों में न पंखे होते हैं और न ही एसी, क्योंकि उन्हें ठंडे मौसम के हिसाब से बनाया गया है, उनमें हीटिंग होती है. लेकिन अब जलवायु परिवर्तन की वजह से गर्मी बढ़ती जा रही है तो यहाँ भी पंखे, कूलर और एसी की मांग में इजाफा हो रहा है. ये वीडियो फ्रांस का है जहां पंखा और कूलर लेने के लिए आपाधापी मची है. दरअसल पिछले दिनों यहां एक सुपरमार्केट ने कहा कि उनके यहां 2,00,000 पंखों और एयर कंडीशनिंग सिस्टम यानी एसी की सेल लगेगी. ये सुनते ही बहुत सारे लोग स्टोर खुलने से 2 घंटे

0: घंटे पहले ही वहां कतार में खड़े हो गए और जब स्टोर खुला तो भगदड़ मच गई। इस तरह की सेल के दौरान कई जगहों पर तो मारपीट की नौबत आ गई। गर्मी की बढ़ती तपिश के बीच कई यूरोपीय देशों में लोग इस तरह पंखा कूलर खरीदने के लिए उमड़ रहे हैं। जर्मनी में तो सारे कूलर और पंखे आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं और नया स्टॉक आने में कई हफ्तों का समय लग सकता है। बहुत पुरानी बात नहीं है जब यूरोपीय देशों में एसी जैसी चीजों को गैर जरूरी माना जाता था, लेकिन ये सोच तेजी से बदल रही है क्योंकि जून महीने के आखिरी दिनों में चली भीषण हीट वेव ने यूरोप में 1300 से ज्यादा लोगों की जान ले ली।
1: पता है कि यूके दिया सड़कां नू आजकल सनस्क्रीन दे नाल साफ किता जा रहा है, ओ क्यों ए दसांगे, पर पहला यूके दिया सड़कां दे हाल बारे गल करिए। हीटवेव दे कारण उथे सड़कां पिघल रहियां ने, सोशल मीडिया ते चर्चा हो रही है कि फिर ता भारत दिया सड़कां चंगियां ने जो औसतन 45 डिग्री दा तापमान भी झेल लैंदियां ने, पर इस सारे मुद्दे नू समझदियां साइंटिफिक नजरिए दे नाल यूके दे विच हैम्पशायर अते वेस्ट बर्कशायर वर्गियां थावां ते गर्मियां दे दौरान ग्रीटिंग ट्रक्स देखे जा रहे ने, जिस तो देख के लोग हैरान ने। दरअसल ग्रीटिंग ट्रक्स अक्सर सर्दियां दे मौसम दे दौरान सड़कां ते देखे जांदे ने। उन्हां दा काम ठंड दे विच बर्फ पिघलाउणा हुंदा है, जिस दे लई उह सड़क ते नमक छिड़कदे ने। इस दा कारण इह है कि नमक बर्फ या स्नो दे फ्रीजिंग पॉइंट नूं घटा के उस नूं पिघलाउंदा है। इस लई बर्फबारी तो पहलां इन्हां शहरां दे विच सड़कां ते अक्सर ही नमक छिड़किया जांदा है, तां जो जदों बर्फ डिगदी है तां नमक नाल मिलके इक घोल बन जांदा है अते बर्फ नूं जम्मन तो रोकदा है। हालांकि जेकर सड़क पहलां ही बर्फ दे नाल जम्मी हुई है तां नमक घट असरदार हुंदा है। खैर असी चर्चा कीती है कि सड़कां ते बर्फ नूं इकट्ठा होण तों किवें रोकिया जावे, पर इस समय यूके दियां सड़कां तां पिघल रहियां ने अते उही ग्रीटिंग ट्रक्स जो अक्सर क्रिसमस दे दौरान सड़कां ते दिखाई दिंदे सी, ओ इस भरी गर्मी दे विच सड़कां ते इस वेले मौजूद ने। अते ग्रीटिंग ट्रक सड़कां ते नमक नहीं छिड़क रहे, सगो स्टोन डस्ट, ग्रेनाइट डस्ट या फिर रेत छिड़क रहे ने। बीबीसी दे नाल गलबात दे विच वेस्ट बर्कशायर दे स्थानक प्रशासन ने ए डस्ट या रेत नू सनस्क्रीन दस्या है, जो कि पिघले हुए बिटुमेन नू सोख लैंदा है ताकि वाहन दे टायर इस दे विच फस ना जान अते ना ही सड़क नू कोई नुकसान पहुंचे। पर ए बिटुमेन की है, तुसी इस नू डामर भी कह सकते हो। दरअसल सड़क निर्माण दे विच वरत्या जान वाला डामर ज्यादातर कच्चे तेल दे रिफाइनमेंट तो बनाया जांदा है। एक रिफाइनरी दे विच कच्चे तेल नू गर्म करके वक-वक उत्पादां नू कढ़िया जांदा है अते अंत दे विच बचिया गाढ़ा पदार्थ बिटुमेन हुंदा है। ए बिटुमेन लिक्विड रूप दे विच हुंदा है अते सड़क निर्माण दे विच एक बाइंडर वजो वरत्या जांदा है। इस बिटुमेन नू सड़क निर्माण दी भाषा दे विच ब्लैक गोल्ड भी कहा जांदा है। एक फेसबुक पोस्ट दे विच वेस्ट बर्कशायर कौंसल ने लिखा कि भावें अजीब लग सकता है पर एक्सट्रीम कंडीशंस दे विच अजिहा होना आम गल है। यूके दियां सड़कां ते काम कर रहियां हाईवे टीम ने दस्या कि जदों तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस हुंदा है तां काले रंग दी सड़क सूरज दी गर्मी नूं सोख लैंदी है, जिस दे नाल सड़क दा तापमान 50 तों 60 डिग्री सेल्सियस तक जांदा है। इस गर्मी दे विच सड़क निर्माण दे विच वरते जान वाला डामर पिघल जांदा है अते चिपचिपा हो जांदा है। जदों डामर उते रेत यानी कि सड़क दी सनस्क्रीन नूं छिड़किया जांदा है तां पिघले हुए डामर नूं सोख लैंदा है तां जो वाहन दे टायरां नूं फसण अते सड़क नूं खराब होण तों रोकिया जा सके। पर सवाल आया है कि इस तों इह साबत हुंदा है कि भारतीय सड़कां यूके दियां सड़कां नालों बेहतर ने? इसका जवाब हां या ना दे विच नहीं दिता जा सकता। यूरोपियन देशां या इत्थों तक कि ठंडे देशां दे विच सड़कां दा निर्माण अक्सर ही सर्दियां नूं ध्यान दे विच रख के कीता जांदा है। 2026 दी हीटवे वर्गा हाल ठंडे देशां दे मौसम दे इतिहास दे विच बहुत ही घट हुंदा है। दूजे पासे भारत दे विच मौसम बिल्कुल वखरा है, इत्थे सड़कां जामदियां नहीं हन क्योंकि ओह गर्मी, लू अते हैवी ट्रैफिक नूं ध्यान दे विच रख के तैयार कीतियां गईयां ने। भारत दे विच हार्ड बिटुमेन दी वरतों कीती जांदी है, इस लई इह 50 डिग्री दे तापमान ते भी नहीं पिघलदियां, जदकि यूके दे विच डामर दे इक सॉफ्ट वर्जन दी वरतों कड़ाके दी ठंड दे विच फटन तों रोकण दे लई कीती जांदी है। सवाल इह है कि की यूरोपियन देशां नूं अपनियां सड़कां ते मुड़ तों विचार करन दी लोड़ है? सिर्फ यूरोप दे विच ही नहीं सगों

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0200-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदा लिसनिंग टू कैलगरीज मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement.
0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ